लता माइस नाम की खोंजेल दा थोंगाम चाओ बसिंग ना सेरिंग बा मतमिशे माता भी रही। आकाशवाणी इम्फाल हौजिक संदोक चरी नहारोल की खोंजेल।

अनिसुबदा लौखत चरिबा मेसेस असे मतमिशाई खनबिरकबा मेसेस नि खनबिरकलीबा इसै थौदाम बपिन चंद्रना सकबा सुकुमार लोयतोंगबमना सैरेंगबा मतमिशाई नि इसै असिबु ताबिनिंगदुना खनबिरकबा मरुपना मोइरांगदगी रश्मि मरुप की इसै खुदल तमजरी तामिनसी

आकाशवाणी इम्फाल के इंडियन म्यूजिक ऑडिशन बी फ्रेश के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म थाजन बिकी बसिंगना एडमिट कार्ड लौबीरनबा लागलिब ऑगस्ट की तांग मंगा दिगी तरानी थोई पाउबगी मनुंगदा ऑफिस आवर मतमदा म्यूजिक सेक्शन द लाकपिनबा निंगसिंगयरी

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे।
1: सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: हौजिग मुख लांथोक चरी श्री रामामदी शिल्पा रावणी की अपुन बखोंजेल दा गीत।

0: candidate pamnai phanglabra
1: misam praja agent sing amadi candidate sing the base toba lila tara sandukna bagi aiba sing dagi script kauchari
0: AIR code soktaba amadi anauba awonba purakpa yaba script sing scrutiny tawjaraga october lesingani kuntaruk tagi thangna thangna na nongmaizing taramakta lila sing sandok jagani
1: september kuntra phawbada pung ama sanagada ba script sing akashbani imphal gi drama section da yohan birhu
2: लेसन लेसु खेन बले रंग कयाना फुगाइन लेस तम निबले कॉल ग पंखखनी आकाशवाणी इंफालगी एफएम संगाई चैनल चैनलिस्ट के दोम न मखल मथिल गी थोरम सिंह लेप्तना ताबिरी लेप्तना ताबियु हौजिग मु पुंफ मसिद पुदुन लक्सरी तोंगान तोंगान बा सैसक बा सैसक पिसिंग दगी मता मिशै मथंग मथंग ओइना

0: Chief Minister Support Scheme of Manipur Startup Scheme ki makhada cheol machata gadaba entrepreneurship development program ma ngasi degi rajya gi planning department ki training hall da hokre from the wangang bada special secretary planning nalentang talent hai nasi pangthol ba training program si bibhag khudi mona saru yaduna kanablawi nasi entrepreneurship nasi gumba program ma sida saru yabiduna startup scheme gi khudong sa balawi yu masida sarkar pangba ba mateng pangani mahakna hai
1: training se yobira basic knowledge lobira ba sigi startup se level me am lay up to 1 crore dagi he ba phau yau gane koi government side ke koi support to ba pe to sara ke ta koi ki bank ki issue lay koi government side ke che chang shu issue de to me am lay ko atu ki me am so koi government ye se lag lo chike high level high level task force to re ecosystem chamber pa lang yo ro mo ro to ki praja gi no ai ba me am so ji kana singly next I think 1 month thago menung sida plan revenue ge so yam na launch to ko double project da matnu ai na bulam ge to ge mata ge so training me am da hajaning bodi phajana yau view full so yau view si sina loi bana ten hoina hen hen na business it so thoke chahon ge ba pa da sak ge so koi ge planning department support to bi gani mating pam bi gani
0: thong da rai ge planning department ge director dr r k radhe sanam de mo kok thong ba official singh sar uya ki Rising Information Technology Vibhang na chinduna Microsoft ka kusam narag ahan ba raja tha ki oiba Digital Governance AI Cyber Security amasung Skill Works omangasi Mantri Pukhri da laiba Civil Secretariat Conference Hall da pangthok ni Mukhya Mantri Yongnam Khemsan ge Indo Tibetan Border Police ITBT ge Inspector General Clay Khongsai ngasi Mukhya Mantri ge Secretary ta unakre unabadu da raja asinga se gilam da paikali ba thabak sing kumna khana nei na ki Social Media tha ka waro lam da Mukhya Mantri na hai सरकार ने सिक्योरिटी एजेंसी सिंह का कुन पाव फाउनो दुना हराई जा शिदा सांची लेने तंग दुले तान लेने बहुत नरी आईटीबीटी ना मतम मतम की लोकर पास सिविक एक्शन प्रोग्राम सिंह अमसुंग नागसिल के थाबसिंग पैकेट पर बो मुख्यमंत्री ना थागर पसुखों दो की Manipur Police na chibo hombogi thabak cha thabadanga Imphal West ke thangwe ban khuyathom polem leka area de gi RPF PLA gi miu MFRA police ke pauna hai farbe miu edu Imphal gi tongan tongan ba mapham singda bom bokhai ne ba thorang tok da chene ba misekni mawanda gi hand grenade ani su phangki amaromda Thoubal jila gi long hauri bi long manga area de asat awasing sector boda nupi ahum yon miu taru phare makhoi de gi sapon kep amada hablam ba heroin pauto engul hene singna ba gram tanare thon su phagat de मकोई दिगे डब्ल्यू वाई टेबले कुनिथोई गारी मसा अनी अमसुंग सेर ओइना लुपा लेसिंग कोंथ्राता एडम सु फंखी मणिपुर पुलिस ना ngasi Thoubal jila gi moijing lengoi jindegi mi amedegi ni sa ओइने सिजनाबा tramadol hydrochloride capsule chani amamsung brown sugar ओइने हेने सिंगनाबा ग्राम निफुम दैसो फागत क्रे Imphal jila bang lagi national highway contractor ta ngasi gi oina tangai pida polom sing pu bagari amata Imphal tam na thok tre koi jiri bam paumi ngathe beso je na police ki pau pale dun hai gari sing adu bunga chen na pugoda ba convoy le ta badi hauji jiri bam da LPG bullet mapal oil tengal kuntaruk am su ate polom sing pu bagari samri kuntra mari punna gari sami pu mapan jiri bam da pandu le leiri India Met Department Haidi Assam Amsu Meghalaya Dangasi Akan Manong Surabaya Henale Ela Lautokre Hokibu Nimit Khare Niyashida Nung Leta Na Chubadigi Assam Amphom Kayaad Ising Thumjin Khibadigi Moksagi Punchida Saun Akaiba Thokle Brahmaputra Turel Amsu Raja Asa Chiali Bamuriba Turel Singi Imai Kudungtiba Thaki Matakta Sele Assam State Disaster Management Authority in Hai Kamrup Metropolitan Golaghat Sipsagariyana Tongan Tongan Ba Jila Tarad Isau Awaba Mayok Nari Hauju Phawda Isau Asna Maru Moidana Miyoi मापर लेखिद्रे अरुणाचल प्रदेश के जिला अहुम दनौन लमिनि खाइबा मसुंग इसाव थोपदि घिमियाम गि मौक्सा गि पुनछिदा चाउन अकाइबा थोकले स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर न थोपा चरोल अमद हाय राइजे से मिय लाख अमरो दिसिन यांखे मंगा हेन इसाव गि अवाबा मायोक नरी सरकाना इसाव थोरप याम फम सिंग दे लेबे मियाम सेक्शन लेइन बखंगन क्रे हाउजे फाउद राइजे से इचाउन मरम ओइदन लेखिदेबे मसिंग तारे छुक्रे विभाग असर मखातन हाई दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब हिमाचल प्रदेश बिहार ने सिंह मफम सिंह लागली बनुमिनी असिदा अकन मनोंग सूरबयाई जम्मू काश्मीर आंध्र प्रदेश कराईकाल कर्नाटक झारखंड उड़ीसा मसुंग अंडमान निकोबर आइलैंड सिंह दंगासी अखा रागोलुनेना नोंग सूगनी ताबिरिब पावसी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी ब्रिक्स कल्चर मिफम आदि मध्य प्रदेश के कोनू भोपाल होरगनी चथकदब मिफम तोान तोान मेलेबाग लाप ऑफिसल कला संस्कृति की लम खने सरु यागनी कल्चर मंत्रालय है भारत की ब्रिक्स प्रेसीडेंसियल की मखाद पंथोप मिफम कल्चर मंत्री डेलीगेट सिंह सरुक यागनी कला संस्कृति आर्टिस्ट की डिजिटल प्लेटफॉर्म होदोकनी अमरुंद तरह सूब ब्रिक्स शिक्षा मंत्री अहम सूब ब्रिक्स सेनियर ऑफिसल मिफम उड़ीसा की भुवनेश्वर होरगनी मिफम ब्रिक्स तोान तोान लेबाग की शिक्षा मंत्री मकोक थोब ऑफिसल सरुक यागनी नीट न्यू जिले कुंतरुक अहम तंक रजिस्ट्रेशन होख्रे मेडिकल काउंसिल कमिटी से पाथोप काउंसिलिंग की अहम तंक की रजिस्ट्रेशन फी थी की तरह फागनी कैंडिडेट था की तरह फाउ की मसा मसा की अपाब खनगनी पी एम सूर्यघर बिजली योजना की मखाद लेबाग युथों लाख यांख हेबद रूपटॉप सोलर इंस्टॉलेशन की खुदचाब फंगनख्रे न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्री प्रहलाद जोशी है स्कीम लेबाग मैं तुमको एनर्जी फंगनबी लंबी चंसिले सोशल मीडिया थागत वरोल मंत्री है युथों लाख तरमापन हेन स्कीम कानब फंगनदुना इलेक्ट्रिक की बिल थी सेल तिंगे केंद्र सरकार की बिल्डिंग कुनमंगा हेन राज्य सरकार की बिल्डिंग मरफुमाथो हेन रूपटॉप सोलर की मई सिजनरे सही असी जुलाई था फाउद युथों लाख मंगा हेनबद स्कीम ख्वाई चौना कानब फंगनख्रे उत्तर प्रदेश सरकार राज्य सेनब सरकार की हूफू सूरब मधक्पी लेमन बस तौहन खुदचाब फंगलगनी सेनब कुंतरुक कुंतरेट की अहम सप्लीमेंटरी बजेट थौरांग पैखनब उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लुपा कोटी साम हंधोनब प्रोविजन सेमले खोथा राज्य क्या चाथो चाचिन तब खुदचाब फंगनदुना सेल की अवाब मयोन हल्लरो अहलना अना लाएंग धर्मिक मियाम तिनब इमुंग मनुंग की चाथो चाचिन तब खुदचाब क्या पीरगनी चामु कुंथ्रा मंगा सूब इंडियन ऑयल दुरान कप फुटबॉल टूर्नामेंट की ग्रुप डी की मैच नेरोका एफसी इंडियन नेवी फुटबॉल टीम को थेरगनी इम्फाल की कुमलनपा मेन स्टेडियम सानगदब मैच असिल पुमरी सानब होगनी ग्रुप डी की रेंद एफसी पॉइंट तरुक फंगदना टेबल की मकोक ग्लासगोद पाथब कमनवेल्थ गेम्स बॉक्सिंग मसा तकमा लाख पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री किरेन रिजिजुना थागत फोदोख्रे न्यू दिल्ली तकमान फलब उब मंत्री ने मैंने थोड़ो हेंदप हई उतना सना की तकमान तरह लुपा की तकमान अहम लौटना माइपुरब थगप फोदी मंत्री है कथोप थी काचे लंबा तौब की मैं उत्व थौनाब नारोल इथिल पीरगनी सऊदी अरेबिया की थाबूदन लाप इंडियन फ्लैग टैंकर एम एस बी फेस न्यूरे ओलेरांग येमें की समुद्र खोमान तैनब रेट लुख्रे जहाज से तौलप भारत मजा तारहोद पुनः मई तरामी कनब गमले पोट शिपिंग एंड वाटर वेस्ट मंत्री सर्बानंद सोनोवाल है जहाज अद प्रोजेक्टर थी लुखीबनी थोदोंब कब फोदली होजिक अरोबद पाव हना चीफ मिनिस्टर सपोर्ट स्कीम ऑफ मणिपुर स्टार्टअप स्कीम की मखाद चेरोल चथगदब एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम इम्फाल होख्रे इंडिया ने डिपार्टमेंट आसाम मेघालय अकन नौ चूरब है रेड अलर्ट लाथोख्रे ब्रिक्स कल्चर मिफम मध्य प्रदेश कोनू भोपाल होरगनी दुरान कप फुटबॉल टूर्नामेंट के ग्रुप डी के मैच नेरोका एफसी इंडिया नेवी फुटबॉल टीम का थेरगनी पाई जा।

शुक्रिया दोस्त सत्यजीत। नमस्कार, 103.5 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित संगाई चैनल, और ये संगाई चैनल है हमारे आकाशवाणी इम्फाल के जरिए, और आप सुनने जा रहे हैं गीतों का आनंद उठाने जा रहे हैं हमारे कार्यक्रम गीतमाला के आपकी फरमाइश कार्यक्रम में, और आपके साथ आज के आपके दोस्त मैं वैलेंटीना आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ।

भाई टिप टिप बरसात है, मौसम अजूबा है और आज के इस महफिल आपकी फरमाइश कार्यक्रम में आपके साथ ज़रूर होगा। ये लॉटरी का टिकट आपके नाम ही लगेगा और लगने वाली है। आप भी टिकट को डालते जाइएगा, फरमाइश करते रहिएगा और हमारे हाथ लगा है ये पहला हमारा लकी दोस्त है, उनका नाम है हिजम अजीम, 501 पार्ट 4 लहराओ मनाक से, और ये सुनना चाहते हैं साधना सरगम और उदित नारायण के युगल स्वरों में। ये दो गीत हैं अनारी फिल्म से, समीर के लेखन पर अपने संगीत से सवारा आनंद मिलन ने।

और देखा तुझे तो हो गई दीवानी। हूबहू वैसा ही हुआ है आपके इस मैसेज को हमें देखकर। और ये मैसेज प्यारा सा आया हुआ है हमारे दोस्त राइजिंग सन ड्रेसेस थांगमेबन थाओ कॉम्प्लेक्स से, थियाम राजेंद्र लुआंग नोंगानबी वोनिका कंगलेचा लुआंग चिंगमेरोंग ममांग लेकाई से, आर के सुनील, आर के किरणमला, आर के वीनस, रीता आरामबम, इबेम नुशी चिंगांगबम। और उनके पसंद का ये गीत है कोयला से। और गायक हैं अलका याग्निक और कुमार सानू। इंदिवर का ये गीत और संगीतकार राजेश रोशन।

वाकई मौसम ये सुहाना है, काफी सुहाना है हमारे गीतमाला के लिए, क्योंकि आपका प्यारा मैसेज मेल हम तक पहुंच चुका है और हम आपके लिए ये गीत सुना रहे हैं और सुनाएंगे जरूर। और अगला गीत है जुदाई फिल्म से मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। गीत के लेखक हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और इसको पसंद करने वाले हमारे दोस्त के नाम हैं पदमपुर जिला श्री गंगाराम राजस्थान से मेहर अरोरा के साथ ममता अरोरा, कीर्ति अरोरा और भूमिका

और ये सदाबहार गीत हमारी गीतमाला की रंगीनियत को बढ़ा रहा है अपनी ही लहर और अपनी ही ताल मधुर आवाज में। और आवाजें हैं लता मंगेशकर की, साथ में बाबला मेहता की। चांदनी फिल्म से ये गीत है, आनंद बख्शी की शब्द रचना और शिव हरी के संगीत निर्देशन में।

और दोस्तों के नाम हैं जो ये गीत सुनना पसंद करते हैं। खोंगजोम सापम से समरेंद्र हेक्रुजम और उनके दोस्त हैं सिंगजमई से रीपा अकोजम।

और दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस गीत के साथ, और इस गीत को चुनने वाले हमारे दोस्त के नाम हैं, बहुत दूर से हैं, पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से, और उनके नाम हैं शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप, संगीता गोप, लिपि गोप और

पसंद करते हैं रागिनी फिल्म से, बहुत ही मज़ेदार गीत है। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में कमर जलालाबादी और ओपी नैयर के तालमेल के से भरपूर गीत और संगीत।

और कार्यक्रम में ये अगला गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में, मजरू सुल्तानपुरी की लेख और नौशाद के संगीत में दोस्ती फिल्म से एक दोस्त ने अपने दोस्त के लिए ये पुकार भरा गीत चुना है। एनजी रणबीर परम्पा चुथिक से और उनके साथ हैं आरके तपाशना

और लग रहा है अरसों के बाद बिछड़े हुए दो यार जैसे मिले हो। लावारिस फिल्म से ये गीत है किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में, अनजान के अल्फाज और कल्याण जी आनंद जी द्वारा ये संगीत है। और पसंद करने वाले हमारे दोस्तों के नाम है हाइंगांग मया इलेकाई से वाकम्बम जॉन, बिजोइसना, अनीता, डेनिस और सोनी।

और दोस्तों नोट कीजिएगा, हमारा नंबर जो है आपकी किस्मत का लॉटरी का नंबर गीतमाला की तरफ से 9863239365। इसमें भेजते रहिएगा आपकी फरमाइश और मैसेजेस, और मेल भी कीजिएगा infalgeetmala@gmail.com पर। नंबर है 9863239365। नोट कीजिएगा, ज़रूर लिखिएगा, हमको पहुँचिएगा गीतमाला की तरफ, गीतमाला के प्रोग्राम और कार्यक्रम पर भाग लीजिएगा अपने गीतों के ज़रिए, और हमारे साथ तालमेल मिलाइएगा। शुक्रिया, नमस्कार।

गीत मालागि थोरम ताबिरे अदोंना थोरम ताबिरे बसि आकाशवाणी इम्फालगि एफएम शंघाई चैनल नि चैनल स्थिति गेदोम ना मखल मथेलगि थोरम सिंग लेतना ताबिरी लेतना ताबियो हौजि गमुक पुदुना लाक्चरी अरिबा मणिपुरी फिल्म मिसै मदि मथम मिसै सिंग मथम मथम ओइना कुदोल गिहान मदले जेरे वांग मा फिल्म स्थिति अहिबम श्याम न सखपा लेहाउ थाबम श्याम सुंदर शर्मा ना सैरेंगबा अहिबम श्याम सिंह ना सैरांग बिसै

0: 小伙伴，老欧，别打嗝，我咋想跟你老海边呢？
1: 来，我咋想跟正爱的朋友是老？
0: 嗨，
1: 等下，都爱看 class 给我咋的嘞？都，
0: 老朋友是老。
1: 그럼자리여자
2: 아야래야래밤아밤아밤아아이기능실어봐사타싱나코이세자티이시기윤비릴각다니코아두나어자나따잉의북링짱나따가다강다바야얼수한가다바고이까이바기바레이로이다니코라이릭딱바핵아우기바가마탐다기랑바수기아야로핵랑바다나사다나타나나하가파민나리바타와이옹나다자리바ง앙두드네아픈바삐도림파레파레아두디라이딱바하우르게아담파낭하요나시기파라두마밍카리카위
0: 오자나시기파라기마밍디타즈마할하이바네
2: 얌농아이바얌파즈크라보와리니코타즈마할하이바닝싱푸라세말렘기앙악파포착싱기마눙찰리바니코낭앙사나코에Taz malbu ura pada nenoi ba.
0: Uji yosa.
2: Ah, TV da. Adegi ayek pelai sindeka ti. Uba yau ramani da.
0: Oh, adu budi ure. Aku ibu bana su. Bazar degi lele aga pelang de teli. Yang pasai da oza.
2: Ah.
0: Pura angau bani ko. Oza. Taz mal sibu kadai jelek ya. Am tu tak pira mo.
2: Ay. Ah. Lama ming tak tengah da. Ay wahang mahana hangge ko.
0: Ah.
1: 항비오자아에코이나강보에가디쿰자게
2: 자자자아나코이부골타미드나
0: 아
2: 마두다람싱기마밍마야마마야우리코마두다아그라하이벌람마기마밍야우드나코이따그라브라
0: 따레오자
2: 아마두따랍디하이로아그라두가람바질라달레이
0: 오자우탈프라데스키마눈달레이바질라아마네아그라하이리비세
2: 야암춤나파우쿰피레이아그라उत्तर प्रदेश की मनुंग दलाई बजिला आमने अदुगुंबा अग्रा है बजिला आदुदा ताजमहल है बा पच्चकर बा पुरा आदु लाई को पुरा आसी जमुना तुरेल की मपाल दलाई बनी को अंगक पन थल्लबा भजब की मपाल नाय द्रबा निंगसिंग पुरा आमने निंगसिंग पुरा आसी की ममांगदा सांग लबा पुखरी यमसुलाई मशिदा मेचिन्ने इसिंग काप खतंदुना अराक मीसिंग की पुनिंग सुमले लूरबा इसिंग न थल्लबा पुखरी सिदा ताजमहल की ममी ताईको मधुदंग येंग बता मिथम होंबा यादन फजरीम ने
0: ओजा ताजमहल का नाना करी द मक्स हरम बनो मधु की मरण द सुखर लिबिरम मो
2: लीगे लीगे न कोई लोई न पुंग चंग न तारो को
0: ओजा
2: न कोई मोगोल निंग थोरेल साजान की ममिंग दी तारा ब्रा
0: तारे ओजा
2: अदुगुंबा ममिंग लेरबा निंग थोरेल अदुगी रानी सिंग मरकता ममताज को भी सक सुधा लंबा लेता ना पंजा रबी हमें यार में ममताज में सक पंजा बता ना तना लोशिंग ले भी हमें सुखर में को रानी सिंगी मरकता साहजा ना ममताज कब तब उन्होंने शीना लू ना तो भी रहे आया ममताम दसु मखोया नीचे जो बोर साना तो ना नुंगाई नुंगाई बुवारी साधु ना मतम सिल्ले लिखो
0: अस ओजा मखा लिबिरो
2: नंग बुवारी सी यम तानिंग बना
0: यम तानिंग ओजा
2: लीगे मखातारो को नमित खुदिंगी मताओ कुमना साजा ना ममताज गलोइने ना चोबोर साना दुना नुंगाई बे इपाक ताऊ दुना लेरमिक साजान ममताज द पुनो लुखी दुना लेबाग प्रजागी मरम द पुनिंग चंगी दे वाखल लमता लातुना साजा ना ममताज की मफम दा ममल नाई द्रब खुदो लम तमनिंग लम अदुगा ममताज द हायरे को मधुदी कमाए हर केदा महाना ममताज बु कयागि मति नुक्सिबगे हायबदो तुंगि मिरोल न खंगोंग नना बथब अम तोनिंगम मदुदा ममताज न हराउ न यारमि अदुगा करम ब निंगसिं खुदम थंबिगनी हायना ममताज न हंगे को मदुदा साजा न खुमलखि ममताज न करिगुंबा मंगोंदगि हाना सिखिब थोगलबदि नंग आइगि सेंगलबा नुक्सिबसे मालेम पुंबंग नना ब निंगसिं पुराम सागनी न हायरम असुमना नुंगाइबा मतम कयामा हौरे
0: ओजा साहाजा न सागा दौरिबे पुरासे तास महल ओइदोइन ट्रा
2: मानी नहाय दु याम चुमी अदबो वारी मखाली की के ताको को
0: ओजा लिबिरो
2: असुमना मतम खरा हौग्रे ममताज बेगम मसा तरा हुंदोइ पुगलब मतुंगदा तरा मरी सुबा अंगा अंगा मुक नाउ पुरमी को yam ngalingai chaukhatringai matam oibana sayam pupi mamata masa yam na solami tara mari suba masado miron bada mahak makhong thang ma phawarami matam gi matung ina kum tha suraduna mamata tara mari suba angang do una bada yam na warami laibak thibedagi angang una bada mamata sangsar dagi bidai laukhiram pause sa jana tarami
1: Oza, adadi sahazan yam thamoi shom bani ko.
2: Chumi, ning thaurel sahazan thamoi yam kai ki, thamoi yam shoki. Sagani thakni hai ba kau duna, sangsara mada tau duna leki. Madu uda, ning thaugi angam mathau singna, ning thaurel adugu, themjin bi ki, mabu phata bi ki. Mahanga, mama tazgi mapham da hai ki, wapham singdo, magi manai singda hai ki. Aduga magi manglan da ukiba ningsing purado madu yek pangamba mi ama thiyo haina thialam
0: oza adu di yamlu bathaba mo oigani ko
2: kari yaru bathaba mo oigatori bna haibdu nangkhara ta haiudana
0: maram di oza ning thorel sa jahan gi wakhal gi phura aduga laik pamidu na yek pagmana roi maram di sa jahan gi wakhal ga laik padugi wakhal ga manabanga moi adugi ne
2: Amaron the dinner and hide to me go. Adubu Sazan leap late and a wonder. Magi Achan Maman I Taduna lie yet put a mumming chalaba misakaya. Ning togi manata puraki. Aduga ning tona palm liver do tak erga. Yellami. Adua awavadi. Makoin a yeg liver paza paza running sing grass in the do. Ning tona amata quidarandi. Mughal ning toril gi a palma say. Lay back sin matunga sandokre. Karigumba ning thorel gi apamba phanglabadi lanthum sana lupa ati chana pigani haiduna pau sandukhre
0: adudi phangki broza
2: ama purei khoida de ko ama lai kram wali ama lai yaude ko ama namugi I mande asunna matam khara haugre do anam mathau singsu karai da aiba leibge thibdane awaba moi
0: Ningthogi athangni na taudaba syara moi kwa aduna angama thau myam da ningthogi apam ba phangna bo na bada as yam waram ni bo
2: aswa ba hai ba bu si ni haningai leitra bani hei wa ba di thangu thangko ne matam dugi ningthorel singdi ko toning mata tau bani ak pa chera pi la kadra hai ba gi mi pai ba ama su yau ni bani masita masina ta pa di sa jan hai ba ningthorel se awang bu tha ki kala ama Pok pada gigi luna lapan ning thau aman. Ning bun ning lepadi phangdaba leiti haiba ipai pugi wapam do. Ya amna cumbu jani ko. Silpakar Ustad Ahmad Lahori kauba. Farasi nupa amgi maming tar. Matam do da mahagse Iran da kau do nacat kirami. Maya I thangba Asia gi nung tanah hakpa jail lama design tong na bagi damak ko.
0: Adzagi mahapu kau rabroza.
2: Cumi ang nakali do. Mahapu Mughal ki ning thorel sahajana kaure hai basi maasu khangre Mahapu logo lae Laibak phabade ki maha ki thabak su loishin ba matam chab chana koi rami ko Sahajan ki maang da leb lere lahore jishe Ning thong na maan ujaba bhaam na sahaba Mang da su uki ba ning sing phuradu ki wari do tamme Lahore wa machet na mata ngang da na mamit uishin dan tumin na laikre Nahak lere ka maha nane Ningxing Prama Yega Ning Torel Sahazan Yingle Madu Uda Sahazan Harao Bugingam Kay Lagidre Masimagni Aina Mangjakiba Manglangi Ningxing Prahaina Laurami Aduga Lahori Magi Sana Konunda Dum Labiraga Ningxing Pura Sahabase Yawna Sukangalamiko
0: Oza Uttar Pradesh ki maming chalaba jila ahungi manungda ama oiriba agrani Mughal singna lam asida pamjana makhoi gi konung su sai haine chumbra
2: yam chumme itihas da agra gi phajab se malem chin ma thung ma ming chali ko phajab phajar ba ngak laba phura dalan kayama agra da lai ko
0: adama kha mung di biroza
2: ustad ahmad lahori se yek pa khot pa amadi sa ba da su ma gi lamba lai pa jalati suki mati kai ba aduna Sazana tabak punamak se mangonda sinarame. Ningsing purasi sabada sangada masa kudimak arap arap mapam dagi lorami. Masi nungautana saba puraniko. खुजिन ममाय आमा भाव हांगदना हक्तुना मनि मचु कयान थाम लगा साबने को
0: ओजा पुरा दुगी ममिंग तास महलाय न थोला मिसि कना ननो
2: निन थौरेल साजा न पामजना थोन कि बनी को ममताज गी ममिंग दगी अरोय बिकी ताज है बसी लौरगा महल है बसी हपसि लगा ताज महल है न थोन कि बनी को भारत की सौथोक से निगाय ओइरबा आगरा की ताज महल निको मालियम की अंगक पतरेट की मनुंगा ताजमहल सु अमनी ताजमहल मी लिसिन कुन्ना सही कुनी थोई चंग छा के बने अदुगा पोट पुथो पुसिन तौननाबा समु लिसिन नम सिजिन नखी को लंग नंग औरबा फजरबा नुंग मयाम म पुरोक पदसु याम न वाकी नुंग मखल कुनगनि पान ताजमहल साबद सिजिन नै को
0: ओजा फजखरबा ममल याम लब नुंग सिंदुदि कदाई कदाई देगी लौरिबा
2: से से से आइना खंग बखरा हाइगे को अग्रादगी मार्बल अंगुबा क्राइस्टेल ना चाइना दगी टर्क्यूज ना तिबेत दगी को अरे सेफियर ना श्रीलंका दगी जेस्परस अमसुंग कर्नेलियास ना अखोगी पंजाब दगी अदुगा अराबिया दगी लौर बनी को हाइरिब मया मसिना लेटिंग ओइना यामना के मोंना सारद छिजिन की को अदुगा अंगुबा स्नो व्हाइट तो मदुना मार्बल नाक्तनी को
0: पुमना मगसे ओजा सहा जहाना ममताज की दमक तौखि बनि हाइबसी अचुमबरा
2: अचुम बनि सहा जाना मागी नुंसिबबु मतम पुमगी ओइना हिंदुना लैनबगी दमक सौख्रब निंसिंग फुरा से सागेन खनकि ओ ताजमहल लसिना मैक्लारब खुदम म ओइरे ताजमहल हाइबा निंसिंग फुरा सिगी ममिंग हेक्ताबदा सहाजान अमदी ममताज की मपाल नायद्रब नुंसिबबु निंसिंग हल्लिको
0: ओजा मसीबु ममताज की मोंगफम ओइब्रो
2: ममताज अमदी सहाजान अनिमकी मोंगफम ताजमहल मनुंग दलेये
0: ओ ओजा आगरादा ताजमहल यिंग बचपिरुरब्रा
2: आ होय आइदि अनिरक चलुरे आहान बचपदुना स्कूल की महिरोय मयामम पुरग चपनी अदुगा अकोन बदुना इमानव खरगा लमकोय बचलुबा
0: ओ ओजा अदुदि असेंग बतास महल उरमनी
2: आ उरे उबदगि हेदो कुना चंगम याबा जगा खरा सो नुम चंगे आइदि
0: अस याम फजा ब्रोजा
2: आ याम फजाई ताजमहल दि फजबदि वाहिना थाबदा सुम वालगदबनी
0: ओजा ओजाना सतपद उरक पखरा तक पिरमो
2: आ ताके ताके ताजमहल से आइ खोइना फोटो दगाति पिक न उबगि वानिको मनाक्त चंगबदि आमना चावग्रब जानि है मसिकी चुथेक मरिदा पिलर मानबा फजखरबा वांगलाबा अमामम युंगदुना थम्बकुम लैको
1: ओजा ताजमहल से जमुना म पान साबने न हाइदाइने
2: जुमि नंग हाइदि दोको से येंगबगी पेन बनाइद्रबा ताजमहल नाम फम चाना जमुना तुरेलि म पान दंगान थोइदि खुलै बना हक हकतुना साखरबा ताजमहल की फजबा जमुना तुरेल नसु हेंगदली को ताजमहल साबद यावरीबा मकोक थुंबा सिमी सिंगदो असुके मते खुलै बंगाक तो ओइर मेजा सा ताजमहल साब लोरकलब मतमदा निंगथोरेल की थमोइदो नुआय बगी पाक तो तारमी निंगथोगी ना कोंगमकना ताजमहल से लंबा लैतना फजे हाइबसे तारमी ममित मंगनसु उजब फंगलबनिना महाक्सु मयामना हाइबदो यानिंगलम अदुबो निंगथोसी वाखलदा मरोवमदि लैरमी को मान खन की ताजमहल मतोम तगी ओइगे हाइना कनागुंबा निंगथवामना मागी मतोक तमदुना साखिब तारबदि महा खांगबंग मोय मरम मसी खनबना मान मकोक थुंबा खुलैब खरगी मकुट लोइन कथल
0: अस निंगथौरे सहाजा हानसिदि पुगजेराम न फजदेबो
2: आ सिनी आ ताजमहल गी वारी को आ परे परे आंगांसा ngasi gidi lo selasiko
1: hoyo
0: za
2: pungtare

0: हेलो हेलो
1: हेलो ताबिबा
0: हो हो ताजे
1: हेलो ताबिबा
0: ताजे गुड इवनिंग मणिपुर ने फोन तो बिरई बा मिंग लाइफ हम हाई व्यू हेलो
1: कमेंट देख पल थे मैं कहीं नहीं थे इन ताजे के
0: अमुक तंग हन हाई व्यू बा
1: ओ आई यू कमेंट देख पल थे मैं कहीं नहीं बा
0: पंथिंग
1: पंखई
0: पंखई होय होय
1: होय
0: लम दो मुक तंग हाई व्यू
1: नोंसुक कमेंट
0: नोंसुक कमेंट
1: होय
0: होय होय नोंसुक कमेंट देगी पंखई ngasi phone tau birak pa kari film gi sai tabi doi no
1: sakthek pi film gi tarun ga pusparani ga sapoto ta ge
0: sakthek pi film da gi tarun ga pusparani ga
1: oh
0: pusparani khak tang na sak po oi doi ro karam ba tarun tarun di sakti
1: tarun da ya ga khami na banya doi ta ge
0: amuk tang hana phasan hai bio
1: kari ba
0: amuk tang hana phasan hai bio pusparani ga nau boi ge sak pa
1: ताजी ब्रा
0: होय होय ताजे
1: पुष्पा

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: गुड इवनिंग
0: गुड इवनिंग फोन तो पिरे इबा मिंग ले फ्रॉम हाई बियो
1: मैं पासवर्ड बात फोन लाया रहा हूँ वना के हिजम अजेम
0: हिजम अजेम
1: हाय मैं
0: अजेम अखोई की रेगुलर लिसनर नी को कॉलर शो बीब दोई ने फोन तो पिरे पा करी फिल्म की करी शेक ताबी दोई नो
1: मैं ना मैं लवी थमोशन आया फिल्म दे दोगे ना
0: लम्हे लबी थमोई शिना
1: हाय मैं सगोर संति जेंडर ना सकवा नंगी अदुकुम बमी नो के दे नी हाइवा इसे तो ताजा के सेंगे वो ना राज्य ने को को सेंगे वो ने केता बदी तोंग बा
0: याम सुम ना हाइबी रे इको अजय अजय फसे कई तो बिरा मिन दबनो
1: साक साक तो को गा सम प्रोग्राम जे तारम मने ने
0: हो हो प्रोग्राम से नंगा ने तारम मी बको
1: हे
0: अद दे साइ सिंग सु उनारे हाइरबनी ने करी मथे लखत पिरे गे ngasigi
1: ने ngasi de ivon va ma de kang ho ma taw
0: होय होय याम चाना बा इंचांग निको इरोम बा मा अमु तोरग साइड दिस ओइना कांग होम जो हपसे लगा याम थावना जा बिरम दो माले
1: होय ना इसे जे आइ ने जियाम फाम जवा दे गे गे से ना मा जियाम फाम जवा माइ मे विंग जे मनी ए ना तंग हफ चेक
0: होय होय याम लुना तिना बा मरु अम गे मिंग सो हैप्पी रे को थागे चेरी अजेम फोन तो बिरक बा इसे फजा बाम सुखन बिरे ए इसे इसे खदोल तम जरा आगे
1: Thank you.
0: Thank you.

0: हेलो हेलो
1: हेलो,
0: हेलो, गुड इवनिंग मणिपुरनी फोन तब इधर ली बा कनाव बीरा बनो मिंग ले फिल्म हाइबियो हेलो
1: हेलो,
0: गुड इवनिंग मणिपुरनी फोन तब इधर ली
1: गुड
0: बा कनाव
1: इवनिंग मैडम,
0: गुड इवनिंग
1: जावा मुद कम जरी
0: थगा चाहिए क्रम जरी फोन तब इधर ली बा मिंग ले फिल्म हाइबियो
1: आ तो जरी वही चीज लंकवा नहीं हो बम देगी लाइक समझाई का कोई चीज है
0: सरिका
1: आओ
0: सरिका ngasi call to birak pa kari film gi kari sei tabi doino
1: आओ मम्मी सामी फिल्म की टाइटल सॉन्ग दूँ ताज़ा जिम्मेदार
0: मम्मी सामी फिल्म की लक्ष्मी

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: अदम थरुम ताविरी बसी आकाशवाणी इम्फाल की FM संगाई चैनल देगी नहीं।

0: आकाशवाणी इम्फाल हौसिंग नुमिदांगी पुंगमा पलतारे मणिपुरी पाओ ताविरसे
1: Şimdi...

आकाशवाणी इम्फाल वाइङबम राजेश पाउ पाजरी मणिपुर पुलिस ने थौपाल जिला की मोइजिंग लेंगोइजिंग मई अमद्रक कोनना फारे मणिपुर पुलिस की पाउन हाई मंगोन की ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड कैप्सूल सनी ब्राउन सुगर सिंब ग्राम निफू हम फागले सेक्यूरीटी फोर्स थौपाल जिला की लिलोंग हाउरेबी लव मंगा एरिया अचित अवक चेक नुपी अहुम यावना मई तरुक फारे मखोइदिगी हेरोइन ग्राम तरानितोय डब्ल्यू वाई टेबलेट कुनितोय चका अनी पानब गाड़ी अनी अमसुंग सेल खर फंगले हरी मणिपुर पुलिस नंगरांग इम्फाल वेस्ट की थामुइबन खोयाथोंग पोलेम लेकाई एरिया आर पी एफ पी एल ए की मई अम फारे हरी महाक इम्फाल एरिया बोम थम्बद चेनब मिशक्नी हरी चयोल चतकदब मालेंग की ममा की खोमलांग पिथक्प चयोल पालंग की सरुक अम ओइना रिम्स इम्फाल की कॉलेज ऑफ नर्सिंग ना एग्जीबिशन कम अवेयरनेस प्रोग्राम असी रिम्स की मैटरनिटी ब्लॉक तो पांगटोखरे ब्रेस्ट फीडिंग फॉर ए सस्टेनेबल स्टार्ट इन लाइफ स्ट्रेंथन वाट वर्क्स हैब हिरम दा पांगटोप थोरम अदुदा नर्सिंग की फैकल्टी मेंबर अमदी महेरोय सिंगना मिरोन बिनुपी चाजेन बिनुपी अमदी अनाब सेनेरिब मियोय सिंग उनदना ममा की खोमलांग पिथपना आंगांग सिदा करी कानब फंगबगे हैबगी मतांगदा ताकपी तंबिकी धनमंजुरी यूनिवर्सिटी ना ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन अलायंस ऑफ मणिपुर का कुसम मदुना मालेंगी ममा की खोमलांग पिथप चयोल पालन थोरम जी पी वेन्स कॉलेज की सेंट्रल हॉल पांगटोखरे थौरम से पांगटोपगी मरुएब पांदम दी ममा की खोमलांग पिथपगी मरुएब अदु हेन खंगनबगी दमकतनी थौरम अदु दा तोंगान तुंगानब मियोय कियाना पिकलिब अंगांग सिंगबु मसा मऊ फना अमसुंग मपुंग मरे फाना थमदब होनबदा ममा की खोमलांग पिथपना कया यामना मरु ओइबगी हैबगी मतांग

नौथी सनाजब पंथौगी चिंगम लब पामबोमदा मनखांग नजब तइंग तइंग लब चिकलब अहिंगी थाबलदा पलियम बिनुम शिरब खोंजेलना सखपिखिबनी नौसुम इसै नेसिसु पलियम बिनुम शिरब नौसुम इसैना खोंथांनेना नापसिदा ययरी मरुप सिंह असिगम लब तांगलब मिकुप सिंह सिबु तराई तराई हेक्तबक कौतो पगम लगजा करीगम मतमदा मरुप सिंह ना पुकनिंग वखल सोंथारपा पुनसिगी लंबीना ममशिलक पमतमदा अदोम लनिंगशिंग बियो अदोम शु पलेम पंथो अनिगी ममल नाइद्रबा तांगलब मनिया मने अदोम नसु हन हन लनिंगशिंग बियो पलेम पंथो अनिगी कांगम द्रबा नुंगशिरबा हौख्रबा मिकुप कया मरुप सिंह मिकुप सिंह अदोम शु निंगसिंग निंगशिंग ना इशाय मतंग पुनतामिनसी तहन जगदौरीबा इशाय एसी जेट केट्रिचा मसामकना सैसक्लीबा अमदी मसामकना सैरेंगबा सैरांगबे सैमी नौसुम

आकाशवाणी इम्फाल हौसे पुंफम मसिद पुजरली तोंगान तोंगानबा सैसक्पसिंग सक्पा गीत मथंग मथंग होइना

0: आकाशवाणी इम्फाल हौजेक नुमिदांगी पुंग तरा मखाई तारे मेगाहर्ट्ज सामग हुम दसमिक मंगा द संदोक जरीबा एफएम संगाई चैनल संदोकपा लोशिंजरी हायेंग इंगेंगी कुलहुम दोइनी पानबा सगोल सेल नुमिद ऑगस्ट की तांग तरुक इंकुम सिंग लिसिंग अनी कुन तरुक सकाप्ता लिसिंग मचमापल निफु निपाल अयुक पुंग मंगा मखाई ताबा मतमदा आकाशवाणी इम्फाल की एफएम संगाई चैनल संदोकपा हौजगनी ngasi gitamak tadi kaina na baya thang ni jeri pinavirasi jai hin
1: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हर सिंगार आपके लिए स्वागत करती हूं मैं कुसुम ये सुरमई सुरमई रात ये बादलों के साए ये हवाओं का बावरापन ये सावन का महीना महकता मौसम ऐसा नहीं लगता कि जैसे कोई पैगाम सुना रहा हो कोई इशारा करता हो जी हाँ जिंदगी का पैगाम जीने का इशारा कुछ ऐसा ही इशारा कर रहा है जीने का ये गीत जिसे हमने लिया है फिल्म अवतार से आइए सुनें

बात कहनी थी, इजाजत हो तो कह दूं मैं। ये भीगा भीगा सा मौसम, ये तितली फूल और शबनम, चमकते चांद की बातें, ये बूंदे और बरसातें, ये काली रात का आंचल, हवा में नाचते बादल, धड़कते मौसमों का दिल, महकती खुशबुओं का दिल, ये सब जितने नज़ारे हैं, कहो किसके इशारे हैं, किसके इशारे हैं। आइए इस गीत में सुनते हैं, जिसे हमने लिया है फिल्म अनजाना से। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ों में ये गीत आपके लिए।

ये भीगी रात, ये कैफे बहार, ये सांसों की सरगम, ये बूंदों की रिमझिम, जिंदगी जैसे इन्हीं पलों में सिमट आई है। सीली हवाओं के होठों पर कोई धुन पुरानी है और मौसम कह रहा कोई मोहब्बत की कहानी है। और ये दिल तो है जो कहता है कि जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। ये गीत महबूब की मेहंदी फिल्म से हमने लिया है, लता मंगेशकर की आवाज में। आइए सुने।

जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं ये तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ ये याद है कि सावन का महीना चल रहा है और ये सावन की भीगी रात भी गुजर जाएगी, फिर किसी और रात में ये रात बहुत याद आएगी। तो याद को मीठी याद बनाने के लिए क्यों ना इस गुजरती रात के स्याह पन्नों पर हम लिखें रोशनी के गीत और मोहब्बत की सरगम में ढालकर बूंदों की धारों पर भेज दें समंदर की आगोश में, जहां हमेशा हमेशा के लिए ये गीत बजते रहें, वक्त के होंठों से छूकर अमर हो जाएं और उम्र की सीमा जन्मों के बंधन से परे ये प्यार बहता रहे दिलों से दिलों तक। कुछ ऐसा ही कह रहा है फिल्म प्रेम गीत का ये गीत।

0: इसी गीत के साथ ही हर सिंगार यहीं तक, लेकिन आप जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। विधेयक में संशोधन के तहत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
2: धारा 370 और 35 से ये एक विभेदकारी और अन्याय पूर्वक एक धारा थी जिसको समाप्त किया नरेंद्र मोदी जी ने, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार भी तेज हुई। विरासत और विकास दोनों को बल मिला, वहां के नागरिकों को रोजगार मिला, पहली बार उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना काम होते हुए देखा, तो नागरिक तो वहां खुश है।
1: विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को निपटाना है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित होने के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू होने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
3: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
1: मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए आज भारत सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। बंबई उच्च न्यायालय ने मेटा, एक्सकॉर्प तथा गूगल एलएलसी को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को निशाना बनाकर बनाए गए अपमानजनक, अश्लील और मान हानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऐसा तंत्र विकसित करने के लिए भी कहा है जिससे पीड़ितों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता के बिना ही ऐसी सामग्री को तुरंत हटाया जा सके। भारत ने आज पाकिस्तान को पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने और उसके अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा है। तथाकथित यौमे इस्ते सहल पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की टिप्पणियों के संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दुनिया इन सुनियोजित तमाशों से मूर्ख नहीं बन रही है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा हैं, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज सिलक्यारा सुरंग बचाओ अभियान में अहम भूमिका निभाने वाले 12 रेट माइनिंग श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग हादसे का बचाव अभियान हाल के वर्षों के सबसे कठिन अभियानों में से एक था। पंजाब पुलिस ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हाल ही में हुए विद्यार्थियों के प्रदर्शनों के दौरान सीमा पार आतंकी मॉड्यूल द्वारा हमला करने की एक योजना का खुलासा किया है। अमृतसर पुलिस ने कल सीमा पार दो आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि वे दिल्ली में जंतर मंतर पर पेट्रोल बम से हमला करने वाले थे। हालांकि भारी सुरक्षा व्यवस्था देखकर उन्होंने अपनी योजना छोड़ दी। अमृतसर पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि नई दिल्ली में हमला करने की कोशिश करने वाले सभी नाबालिगों को आईएसआई द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashwani, the news read by Reshma Tiwari. The Parliament has passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha returning the legislation to the Lok Sabha after discussion. The Lok Sabha had passed the bill on Monday. The legislation amends the Supreme Court Number of Judges Act 1956 for increasing the number of judges of the Apex Court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. Union Law and Justice Minister Arjun Ram Meghwal moved the bill in Rajya Sabha. Replying to the debate in the House, Mr. Meghwal said, in view of the increasing workload of the judiciary, the evolving nature of judicial matters and the emerging constitutional and legal interpretations issues, increasing the number of judges in the Supreme Court is the need of the hour for a timely reform. The strength of the judges of the Supreme Court was last increased from 30 to 33, excluding the Chief Justice of India, by amending the original Act through the Supreme Court Number of Judges Amendment Act 2019. After completing the business, the Deputy Chairman adjourned the Upper House for the day. Earlier in the day, the Upper House witnessed repeated disruptions over several issues, including alleged police action during students' protest on the NEET paper leak issue. The Lok Sabha has passed the Bankers Books Evidence Bill 2026. The bill seeks to provide a law relating to evidence with respect to bankers' books and to align it with contemporary digital banking practices. It aims to modernize the legal framework to meet the requirements of the present banking system. The bill also has a provision that an electronic or digital record of a banker's book will be admissible, valid, and legally enforceable as evidence. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman moved the bill when the House reassembled after the first adjournment at 2 p.m. CEO of Meta, the parent company of several of the world's largest social media networks and communication tools, Mark Zuckerberg today sent his apologies to the government of India for the child sexual abuse material, related content, deepfake content and errors in operating the platform. Sources said Meta admitted that a lot of money was paid for boosting certain type of content. Today marks 7 years since the historic abrogation of Articles 370 and 35A. On this day in 2019, a landmark decision marked the beginning of a new chapter in the journey of Jammu and Kashmir and Ladakh. Prime Minister Narendra Modi, in his message on the occasion, said, "Constitutional changes made in 2019 ushered in development and empowerment in the two union territories." In a social media post, Mr. Modi highlighted that infrastructure has expanded, opportunities in areas such as education, healthcare, entrepreneurship and sports have grown in both Jammu and Kashmir and Ladakh. On the 7th anniversary of the abrogation of Article 370, Union Law and Justice Minister Arjun Ram Meghwal, while talking to the media, said the historic step accelerated development in Jammu and Kashmir.
5: Article 370 and Article 35A were discriminatory and unjust provisions which were abolished by Prime Minister Narendra Modi in 2019. Since then, the pace of development in Jammu and Kashmir has accelerated. Both heritage and development have received a boost. Employment opportunities have increased and people have witnessed unprecedented infrastructure growth. The

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Gaura Dhawan Lal with my co-anchor Prachi Priya.
1: Namaskar, Market Mantra mein aapka swagat hai. Desh videsh ki aarthik gatividhiyon aur share bazaar ki halchal par charcha ke liye aaj shrotaon hamare saath aamantrit hai hamare samaksh varishth aarthik patrakar Siddharth Singh. Siddharth, karyakram mein aapka abhinandan.
2: Prachi, aap ke saath saath Gaura, aapko bhi good evening.
1: Sabse pehle ek nazar aaj ki aarthik surkhiyon par.
0: Thank you, Prachi. Siddharth, once again, good evening. Welcome. Listeners, a quick look at the headlines. Benchmark domestic indices end on positive note. Sensex rises over 150 points. Nifty settles above 24,600. RBI leaves repo rate unchanged. Raises current fiscal year growth forecast to 6.7%. Trims inflation projection to 5%. And global crude oil prices rise.
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में बढ़त सेंसेक्स 150 अंकों से ऊपर बढ़ा निफ्टी 24,600 से ऊपर बंद हुआ भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है चालू वित्त वर्ष में विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% किया वहीं महंगाई दर का अनुमान 5% घटाया है दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी
0: Listeners, before we move further into the program, we'd like to share that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज बढ़त के साथ बंद हुए सेंसेक्स 152 अंक बढ़कर 78,581 पर बंद हुआ वहीं निफ्टी में मामूली 10 अंकों की बढ़त हुई और ये 24,625 पर बंद हुआ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप इंडेक्स 0.2% और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.8% बढ़ा बाजार ने बढ़त के साथ शुरुआत की लेकिन जैसे जैसे कारोबार आगे बढ़ा दोनों प्रमुख शेयर सूचकांक कमजोर होते नजर आए हालांकि कारोबार के अंत में क्लोजिंग ऑक्शन सत्र के बाद दोनों ही प्रमुख शेयर सूचकांकों ने कुछ हद तक रिकवरी भी की
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस एंडेड ऑन अ पॉजिटिव नोट टुडे द सेंसेक्स गेन्ड 152 पॉइंट्स टू क्लोज एट 78,581 द निफ्टी रोज मार्जिनली बाय 10 पॉइंट्स टू सेटल एट 24,625 In the broader market at the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 Index rose 0.2% and the Small-Cap 100 Index added 0.8%. Earlier, the markets opened in the positive zone, but as the session progressed, both benchmark indices slipped into negative territory. However, towards the end of the session, the Sensex and the Nifty paired their losses after the closing auction session.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 18 कंपनियों के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई सबसे ज्यादा बढ़त वाली कंपनियों के शेयरों में अल्ट्राटेक सीमेंट 2%

0: HDFC 1.8% और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तथा महिंद्रा एंड महिंद्रा 1.7% बढ़े। वहीं घाटा दर्ज करने वाली कंपनियों के शेयरों में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 1.2%, HCL टेक 1% से अधिक और रिलायंस में लगभग 1% की गिरावट आई।
1: In sectoral indices on the BSE, 21 out of 28 sectors ended in the positive zone. Among the top gainers, housing finance advanced 1.8%, metal rose 1.6% and auto gained 1.4%. In contrast, mid-small private banks quality tilt. Energy and oil and gas fell by 0.4%, mid-small private banks fell 0.3% and capital goods dropped by 0.2%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,292 companies advanced, 1,958 declined and 198 remained unchanged.
0: और अब जान लेते हैं श्रोताओं रुपए का हाल। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 25 पैसे मजबूत होकर एक अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.13 रुपए पर बंद हुआ। सिद्धार्थ, अगर हम पिछले यूएस स्टॉक मार्केट के सेशन की बात करें तो वहां पर एक रैली रही, तो क्या ये उसी का प्रतिरूप हमें आज बाजार में देखने को मिला कि बाजार जो है पॉजिटिव नोट पर बंद हुए?
2: नहीं, उसके अलावा प्राची, जो मुझे लगता है ना, केवल जो यूएस मार्केट का रिफ्लेक्शन जो आप बोल रही हैं, वहाँ पे जो तेजी है पिछले 3-4 दिनों में, खासकर आईटी स्टॉक्स में तेजी है जो अमेरिकी बाजारों में, मुझे लगता है कि आज जो मुझे लगता है जैसा जैसे जब बाजार खुले तो काफी फ्लैट थे, उसके बाद गिरे भी लेकिन उसके बाद रिकवरी आई, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं 2-3 जो महत्वपूर्ण कारण, मुझे लगता है खासकर एक जो अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध है उसकी जो अनसर्टिनिटी है वो कहीं ना कहीं अभी भी बाजार में बनी हुई है, और उसके अलावा मुझे लगता है आज प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिला मुझे लगता है, तो कहीं ना कहीं ये 2 कारण और मुझे लगते हैं जो बाजार पे कहीं ना कहीं हावी रहे।
0: रेपो रेट का
2: मतलब जो रेपो रेट जो आया आरबीआई का जो अनाउंसमेंट है रिजर्व बैंक का, सेंट्रल बैंक का, वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड लाइंस पे था। वो एक्सपेक्टेड था कि कोई बहुत ज्यादा, मतलब इस समय कोई वो बदलाव
0: नहीं था, बिल्कुल नहीं।
2: वो जो न्यूट्रल स्टांस है, और वो आप देखेंगे चाहे अमेरिका का जो फेड है, फेड रिजर्व, उन्होंने भी अभी तक अपने इंटरेस्ट रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया, चाहे यूरोपियन सेंट्रल बैंक हो, तो मुझे लगता है वो उसमें कोई बहुत आश्चर्य नहीं था। बाजार ने उसको मुझे लगता है कहीं ना कहीं फैक्टर इन कर रखा था, और वो अच्छा भी है, शुभ संकेत है हमारी बाजारों के लिए।
1: सो दैट लुकिंग एट द जियोपॉलिटिकल सिनेरियो इन टर्म्स ऑफ मार्केट्स बिल्डिंग इन सर्टेन प्री एग्जिस्टिंग जियोपॉलिटिकल कंडीशंस, कीपिंग ऑल दैट इन माइंड एंड ऑल्सो कीपिंग आई थिंक द फैक्ट दैट द इंडियन इकोनॉमी इज सॉलिड रोबस्ट, आई थिंक कंजम्पशन इज स्टिल देयर, द मॉनसून हैज पिक्ड अप, which was predicted not to be so good, but I think by and large it's averaging out with little pockets of disturbance. Do you think that somewhere in August and September there was a sentiment that maybe the markets won't be really rallying or really picking up? Do you think the range in which they're going to move is going to go up a step now?
2: Gaurav, it will all depend the direction of the market for, as you asked, would they move out of the current range, that I think to a large extent would depend on how US President Donald Trump, his next stance, because obviously now first current uncertainty, that is the US-Iran war that is going on, and one thing which has become certain is uncertainty. Every day we hear both the sides, or at least the American president saying or announcing that they are expecting to reach a peace deal with Iran, but from the other side then there is some contradiction. Again yesterday their hopes have been raised, he's issued a statement sometime earlier in the day, also we saw the statement that the Strait of Hormuz is likely to get normal, operations are likely to get normalized. So I think one would be how the US-Iran conflict pans out in the coming days, and how the peace, whatever peace deal is reached, how it is actually implemented, or whether it is something which is stable, which stabilizes or is implemented actually on the ground. So I think that would be one factor. Plus, yes, as far as our own GDP numbers would come now, we had very good GDP numbers. Q4 was very good. And also, if you look at the monetary policy announcements by the RBI governor, I think he's also upped the growth prospect, has gone up. As the concern, which is that inflation was a concern, obviously, because of the West Asia, because we are huge importers of energy, and that obviously feeds into

0: उन्होंने एक्सपोर्ट्स की बात की और जीडीपी का भी आकलन जो है उसको भी ऊपर किया है. पहले पिछली मॉनेटरी पॉलिसी में इट वाज 6.6 और इस बार उन्होंने 6.7 का एस्टिमेट किया है फॉर दी करंट फाइनेंशियल ईयर. तो कहीं ना कहीं, और अगर आप रूरल डिमांड देखें या अर्बन डिमांड देखें, इंडस्ट्रियल साइड, सर्विस सेक्टर, तो कहीं ना कहीं, और जो लेटेस्ट नंबर्स आ रहे हैं, चाहे जीएसटी के नंबर्स आए हों या जो कार सेल्स के नंबर आए हों, तो कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल दिखती है कि जो हिंदुस्तान मैक्रो इकोनॉमी फंडामेंटल्स हैं इंडिया के, वो इंटैक्ट हैं एंड देयर इज नथिंग टू वरी.
1: बिल्कुल सिद्धार्थ, वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भी हमारे जो डोमेस्टिक इंडिकेटर्स हैं वो पहली तिमाही में काफी रेजिलिएंट नजर आए. बहरहाल इस संदर्भ में आइए सुनते हैं आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने क्या कहा.
2: Renewed tensions in West Asia, which are disruptive of global supply chains, volatility in international financial markets, and weather-related shocks pose downside risks to growth. However, domestic economic activity has exhibited resilience, as reflected by the high-frequency indicators available for Q1. Early results of corporates for Q1 indicate healthy performance in the manufacturing sector. This is also corroborated by an expansionary PMI. Services activity too maintained its momentum in the wake of strong domestic demand. Overall, the Indian economy performed better than expected in Q1.
1: आगे बढ़ते हैं और इसी से जुड़ी एक और खबर. रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि यदि सब कुछ टेस्ट कार्यक्रम के अनुसार रहा तो अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में प्लास्टिक के नोट चलन में आ जाएंगे. मुंबई में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने बताया कि प्लास्टिक के नोट अधिक टिकाऊ होते हैं. उन्होंने ये भी बताया कि इनके सुरक्षा फीचर्स और अन्य विवरण जल्द साझा किए जाएंगे. प्लास्टिक के नोट जब चलन में आ जाएंगे, जिसकी परिकल्पना हम अभी कर रहे हैं, और किस तरीके से उभरेंगे ये तो वक्त बताएगा सिद्धार्थ, मगर आप इसे कैसा देखते हैं ये हम जानना चाहेंगे.
0: नहीं प्राची, मुझे लगता है कि दुनिया के 30 देश कम से कम ऑलरेडी प्लास्टिक नोट्स जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, और आरबीआई रिजर्व बैंक भी इसको एक पायलट के तहत अभी शुरू कर रहा है. एक पायलट प्रोजेक्ट होगा, हालांकि जो एक्चुअल हमको देखने को मिलेंगे नोट्स वो अगले साल अप्रैल में, जो उन्होंने बोला है अगले वित्त वर्ष के शुरू में. और मुझे लगता है उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं. कम से कम ऐसा बोला जाता है कि जो अपने कागज़ के नोट हैं उनसे कहीं ना कहीं कम से कम 2 से 4 गुना ज़्यादा उनका लाइफ स्पैन होता है. आप उसमें जो फीचर्स हैं, सिक्योरिटी फीचर्स और अच्छे डाल सकते हैं, और अगर लाइफ स्पैन ज़्यादा होगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा अगर कॉस्ट इनिशियली ज़्यादा भी होगी तो जो उनकी लाइफ स्पैन है अगर वो ज़्यादा है तो वो उसको कवर कर लेगी. तो कहीं ना कहीं एक तो दो कारण तो ये हो गए. तीसरा जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने बोली कि जो छोटे नोट्स हैं, जो छोटे डिनोमिनेशन के नोट्स हैं
1: जी,
0: उनका जो उसका शुरुआत हम वहां से कर रहे हैं, और वो इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि अगर आप देखेंगे 10 या 20 रुपए के नोट्स की जो बात हो रही है तो कहीं ना कहीं ज्यादा जो आप इस्तेमाल में आते हैं वो 10 रुपए या 20 रुपए के नोट्स का चलन ज्यादा होता है. हाँ, जो 500 का नोट है वो आप रोज रोज हर चीज में अपने लेन देन में उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन वहां पे जो है छोटे नोट्स, इसीलिए फोकस इज ऑन स्मॉल नोट्स, स्मॉल डिनोमिनेशन नोट्स. और ये आने वाला मुझे लगता है इसीलिए उन्होंने बोला कि पायलट के तौर पे शुरुआत करें, अगर रिजल्ट्स अच्छे होंगे तो इसको और जो है बड़े पैमाने में इसको आगे बढ़ाएंगे.
1: बिल्कुल.
3: मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट न्यूज आइटम, द ऑफर फॉर सेल इन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया व्हिच क्लोज्ड टुडे अट्रैक्टेड बिड्स फॉर अबाउट 70% ऑफ द शेयर्स set aside for retail investors. According to BSE, the category placed bids for about 57.6 million shares compared to 82.2 million shares reserved for retail investors. Yesterday, offer for sale in the LIC received an overwhelming response from institutional investors and was oversubscribed. In view of the exceptional demand, the government had decided to exercise the green shoe option. Moving on to our next story, India's services sector remained in expansion territory in July, supported by healthy export demand and continued hiring. According to the HSBC India Services Purchasing Managers Index PMI, data compiled by S&P Global, the seasonally adjusted services PMI, business activity index stood at 53.3 in July. It remained above the 50 mark that separates growth from contraction. However, the country's service economy growth slowed in July as business activity rose at the weakest pace in over 4 years. This was largely due to softer demand, competitive pressures and order postponements. Meanwhile, service providers continued to report growth in activity, with strong overseas demand emerging as a key support factor. The report showed that the rate of job creation showed an uptick from that in June, with service providers continuing to expand their workforce. Further, input cost inflation softened to a six-month low and remained below the long-running average despite higher fuel, labor, material, technology and transportation expenses. Additionally, the HSBC India Composite PMI Output Index, which tracks both manufacturing and services activity, fell to 54.3 in July, from 57.1% in June. Siddharth, here we're seeing figures and we're also seeing, mixed indications. And we also know that a lot of seasonal adjustments, normally some months, it does traditionally fall and does pick up later. Anything, any area of concern? Because we're moving overall over the indicators, we're seeing a marginally downward movement.
0: No, Gaurav, I don't think it is anything of concern, obviously. And also this PMI index, it also gives us it's a futuristic indication of things to come. So the heartening, still what is heartening in this is that it is above 50%. So anything above 50% is indicates that there is expansion, there is in demand. So nothing to worry. And the other important why we should watch this data is also because, especially the service index, because almost 50% of Indian economy is now service sector. So I don't think there is anything to worry. Yes, obviously, and this is despite so much of uncertainty, and so I don't see still anything which is should be a matter of concern.
3: Oh, right. Okay. It could be considered in, as they say, in the normal flow of things.
0: And it is sometimes it's also month to month dips.
3: Absolutely.
0: So probably then next month it picks up.
3: And not read too much into it.
0: Yeah. And it is, since it is still futuristic and above 50%, so I don't think anything to concern as a matter of concern.
1: आगे बढ़ते हैं गौरा और जायजा लेते हैं एशिया बाजार का. प्रमुख एशियाई शेयर बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी लगभग 4% और जापान का निकेई 3.5% से अधिक बढ़ा. सिद्धार्थ, क्या ये कहना उचित होगा आज की तारीख में कि एआई को लेकर के जो भय जो एक लोगों के दिल में था वो अब धीरे धीरे निवेशकों के जहन से उतर रहा है, कम हो रहा है? क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं एशियाई बाजार के संदर्भ में, तो आप क्या इससे सहमत होंगे कि अब ये भय उतर रहा है, या फिर अभी कहीं ना कहीं और भी देखने की जरूरत है और वक्त लेने की जरूरत है?
0: जी प्राची, मुझे लगता है ये मतलब अगर मैं एकदम से कहूं कि नहीं ये खत्म हो गया ये भय, तो ये सत्य नहीं होगा. क्योंकि जब ये भय आया था तब भी आप देखेंगे जो जिस मार्केट की आप बात कर रहे हैं साउथ कोरियन कॉस्पी, तो वहां पे जो दो बड़ी कंपनियां उनको रिकॉर्ड ऑर्डर्स मिले थे यूएस की कंपनियों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो चिप्स वगैरह बनाने,
1: यानी ये कड़ी वहां से जुड़ी हुई.
0: हाँ बिल्कुल है, उसका बहुत बड़ा रोल है उनका वहां पे, क्योंकि दो बड़ी कंपनियां दुनिया को जो सप्लाई कर रही चिप्स वो साउथ कोरिया के मार्केट में ही है. उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन से आता है तकरीबन 50%. तो ये जल्दबाजी होगा कहना कि अब वो भय खत्म हो गया. लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं जो रिजल्ट्स आए हैं और कहीं ना कहीं जो एक अब जो लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिना भी दुनिया आगे नहीं बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ का पार्ट है. हाँ, अब वो उसकी वैल्यूएशन, उसमें जो इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं वो कितना जस्टिफाई करेगा, वो आने वाले समय में तय होगा. और अभी ये कह देना कि भय खत्म हो गया, मुझे लगता है जल्दबाजी,
1: यानी कुछ चीजें गौरा भविष्य के गर्भ में रहने.
3: Right. In fact, when we talk of the fear linked to this, I think the concern that it's a bubble, it's a very big bubble, it's going out of proportion, that somewhere has been moderated. And I think also strengthened by the fact that, you know, it's not really a bubble, but it's a sunrise area.
0: Or would do the kind of investment justify the earnings? Probably that also is a reason.
3: Right. Our next story, government has operationalized the inventory-based cross-border e-commerce export framework under the Foreign Trade Policy 2023. The framework provides a comprehensive policy and procedural architecture for facilitating inventory-based cross-border e-commerce exports of goods manufactured or produced in India. It incorporates several safeguards to ensure that the benefits of e-commerce exports accrue to Indian manufacturers and MSMEs while maintaining regulatory oversight. It also provides for timely payments to Indian sellers within the prescribed timeline, irrespective of the receipt of payment from overseas buyers. A quick comment here, Siddharth, because one of the grudges of the MSMEs is that, you know, we want a quick turnaround time for the money to come back to us.
0: Timely payment.
3: This will, yes, because that keeps them going.
0: Yeah, I think another one more step in the direction of ease of doing business and facilitating the process of

0: 2,490 rupees per 10 grams, while silver was trading 3% higher at 2,28,800 rupees per kilogram a short while ago.
1: Multi-commodity exchange mein agast anubandh wala sona 1.8% badhkar 1,45,140 rupees prati 10 gram par tha aur september anubandh wali chandi 2.7% ki badhat ke sath 2,27,520 rupees prati kilogram par karobar kar rahi thi. Siddharth, samay ki paridhi mein rehte hue main tippani aapse chahungi sone ke dam par khas karke aur ek sone chandi agar aap dono ke dam par bataye to behtar hai.
2: Nahi dekhiye sona abhi tak jo bottom humne dekha is पिछले 2-3 महीने में हमने देखा तकरीबन $4,000 पर आउंस पे कहीं ना कहीं वो मतलब वहां बाइंग आ रही है. हाँ, वहां बाइंग आ रही है, लेकिन अभी आप जब आज की बात करें तो एक बार फिर कीमतें बढ़ी हैं. तकरीबन मुझे लगता है $4,100 के ऊपर पर आउंस है, और उसके दो प्रमुख कारण जो मुझे लगता है, एक तो जो क्रूड ऑयल की कीमतें नीचे आई हैं, साथ ही साथ जो यूएस के ट्रेजरी यील्ड्स हैं या बॉन्ड्स पे जो इंटरेस्ट रेट है वो भी थोड़ा घटा है हल्का सा. तो वो दोनों कारण है, क्योंकि गोल्ड को ये माना जाता है कि इसमें कोई आपको रोज कोई इंटरेस्ट बेयरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है. तो लेकिन साथ साथ इसके साथ साथ ये भी कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो भी अभी भी बड़े पैमाने पे गोल्ड जमा कर रहे हैं या खरीद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो डिमांड बनी रहेगी.
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ कार्यक्रम में भाग लेने के लिए. मेरे और गौरा के हम दोनों के ही तमाम सवालों के जवाब.
2: आप दोनों को भी धन्यवाद.
0: थैंक यू सिद्धार्थ. Before we close the headlines, benchmark domestic indices end on positive note. Sensex rises over 150 points. Nifty settles above 24,600. RBI leaves repo rate unchanged, raises current fiscal year growth forecast to 6.7%, trims inflation projection to 5%, and global crude oil prices rise. That's all for today. Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत मेरे मनमीत आपके लिए स्वागत करती हूं मैं कुसुम। पहला गीत हमने लिया है फिल्म असली नकली से, आइए सुनें।

फिल्म श्री 420 का ये गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और मुकेश मन्ना डे की आवाजों में। अगला गीत हमने लिया है फिल्म मदर इंडिया से, लता मंगेशकर की आवाज में, आइए सुनें।

फिल्म साहिब बीवी और गुलाम का ये गीत आपने सुना गीतादित्य की आवाज में। कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनिए फिल्म आया सावन झूमके से, आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

0: इसी गीत के साथ ही गीत मेरे मन में यहीं तक कुसुम को दीजिए इजाजत, लेकिन आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का संगोर चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंजू आ गई है स्टूडियो में आगे का कार्यक्रम लेकर। कुछ ही पलों में इस चैनल पर आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। विधेयक में संशोधन के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
2: धारा 370 और 35 से ये एक विभेदकारी और अन्याय पूर्वक एक धारा थी जिसको समाप्त किया नरेंद्र मोदी जी ने, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार भी तेज हुई, विरासत और विकास दोनों को बल मिला, वहाँ के नागरिकों को रोजगार मिला, पहली बार उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना काम होते हुए देखा तो नागरिक तो वहाँ खुश है।
1: विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को निपटाना है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित होने के बाद कल दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू होने का करने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
3: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी कर प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
1: मीडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए भारत सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मीडिया ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। बंबई उच्च न्यायालय ने मीडिया एक्स कॉर्प तथा गूगल एलएलसी को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को निशाना बनाकर बनाए गए अपमानजनक, अश्लील और मान हानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऐसा तंत्र विकसित करने के लिए भी कहा है जिससे पीड़ितों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता के बिना ही ऐसी सामग्री को तुरंत हटाया जा सके। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और शिक्षा को सभी के लिए बेहतर और सुलभ बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि सरकार की प्रमुख योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने पर भी विचार विमर्श किया गया। महाराष्ट्र के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कल रेजिडेंट डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गई। इससे ओपीडी सेवाएं प्रभावित रहीं। डॉक्टर राज्य सरकार के उस फैसले का विरोध कर रहे हैं जिसमें होम्योपैथी डॉक्टरों को एक विशेष प्रशिक्षण के बाद एलोपैथी दवाएं लिखने की अनुमति देने का प्रावधान है। सेंट्रल महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स के अध्यक्ष डॉक्टर अथर्व शिंदे ने कहा कि सरकार से बातचीत नहीं होने पर 24 घंटे बाद आपातकालीन सेवाएं भी बंद की जा सकती हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास कल लैंडमाइन विस्फोट में सेना के दो जवान घायल हो गए। ये घटना मेंढर सेक्टर के कांगा गली इलाके में हुई जहां सेना के जवान लैंडमाइन को निष्क्रिय करने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान विस्फोट हो गया। घायल जवानों को तुरंत सेना के अस्पताल ले जाया गया जहां उनका इलाज जारी है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा और अनमोल खरब सहित सात भारतीय महिला खिलाड़ी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इन खिलाड़ियों में इशरानी बरू

दोस्तों समय हुआ है 12:11 और ये हुए 13 सेकंड। मैं हूँ आपके साथ अंजू, कार्यक्रम लेकर आई हूँ निशिगंधा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और उम्मीद करती हूँ कि ये सफर हमारा बहुत सुंदर रहेगा। तो चलिए शुरुआत करती हूँ हमेशा की तरह कुछ अल्फाज के साथ। ये सावन की फुहार और तुम्हारी मीठी सी बातें, ये सावन की फुहार और तुम्हारी मीठी सी बातें, लगता है सदियों बाद आई हैं ऐसी हसीन रातें।

सच तो है कि कुछ कहता है ये सावन. क्या कहता है सुनिए. कहता है कि बूंदे तो गिर रही हैं लगातार मेरे आंगन में, बूंदे तो गिर रही हैं लगातार मेरे आंगन में, पर एक तुम्हारी कमी खल रही है इस सावन में.

मांग लो खुदा से यह खुद को तुम्हारे नाम कर दूं, मांग लो खुदा से तुम्हें या खुद को तुम्हारे नाम कर दूं, मेरे इस नादान दिल पर पूरा हक, मैं चाहती हूं तुम्हारे नाम कर दूं।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

दोस्तों समय हुआ है 12:28:53. कार्यक्रम चल रहा है निशिगंधा और मैं आपके साथ अंजू.

शायद तुम्हें नहीं पता कि बिना कुछ कहे वो सब कुछ कह जाती हैं, कि बिना कुछ कहे है वो सब कुछ कह जाती हैं। तेरी आंखें ही तो हैं जो मेरे दिल में रह जाती हैं।

क्या करूं कि तुम इस दिल की धड़कन में हमेशा बनकर रहते हो, क्या करूं कि तुम इस दिल की धड़कन में बनकर रहते हो, मेरी हर सोच मेरी हर बात में सिर्फ तुम ही रहते हो।

तुम देखना एक दिन की किस्मत के पन्नों पर खुदा खुद ये पैगाम लिखेगा, तुम्हें देखना एक दिन कि किस्मत के पन्नों पर खुदा खुद ये पैगाम लिखेगा, एक दिन वो हमारी मोहब्बत का मुकम्मल अंजाम लिखेगा।

लोग बदलते होंगे बदलते मौसम की तरह यहाँ लोग बदलते होंगे बदलते मौसम की तरह यहाँ पर मुझे भरोसा है तुझ पर कि मैं हूँ तेरी जमीन और तू है मेरा आसमां

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल

0: पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। विधेयक में संशोधन के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
1: धारा 370 और 35 से ये एक विभेदकारी और अन्याय पूर्वक एक धारा थी जिसको समाप्त किया नरेंद्र मोदी जी ने, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार भी तेज हुई। विरासत और विकास दोनों को बल मिला, वहाँ के नागरिकों को रोजगार मिला, पहली बार उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना काम होते हुए देखा, तो नागरिक तो वहाँ खुश है।
0: विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को निपटाना है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित होने के बाद कल दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
2: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो। कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
0: मीटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डी फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए भारत सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मीटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। बंबई उच्च न्यायालय ने मेटा, एक्स कॉर्प तथा गूगल एलएलसी को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को निशाना बनाकर बनाए गए अपमानजनक, अश्लील और मानी हारक सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऐसा तंत्र विकसित करने के लिए भी कहा है जिससे पीड़ितों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता के बिना ही ऐसी सामग्री को तुरंत हटाया जा सके। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रक्षा सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की छठी बैठक कल ताशकंद में हुई। बैठक में दोनों देशों ने संयुक्त सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण, रक्षा शिक्षा, क्षमता निर्माण और रक्षा उद्योगों को बढ़ावा देने जैसे मुद्दों पर चर्चा की। बैठक की सह अध्यक्षता भारत के रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव दिनेश कुमार और उज्बेकिस्तान के रक्षा मंत्रालय के अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल सुखरोव जोन सोजिक जोनोविच सिरोजोव ने की। दोनों देशों ने आतंकवाद विरोधी अभियानों और सैन्य तालमेल बढ़ाने पर जोर दिया। इसके अंतर्गत दोनों देशों में विशेष प्रशिक्षण और अभ्यास आयोजित किए जाएंगे जिससे सैनिक एक दूसरे के अनुभवों और बेहतर रणनीतियों को साझा कर सकेंगे। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने ताशकंद स्थित सैन्य सुरक्षा और रक्षा विश्वविद्यालय का दौरा भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में कहानी कहने की समृद्ध परंपरा और रचनात्मक प्रतिभाओं की बड़ी क्षमता मौजूद है। इसका उपयोग भारत को वैश्विक स्तर पर कंटेंट निर्माण का केंद्र बनाने में किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने नई दिल्ली में नेटफ्लिक्स के सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सारंडोस से मुलाकात की। नेटफ्लिक्स इंडिया ने बताया कि बैठक में भारत के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को वैश्विक मंच पर ले जाने की साझा सोच पर बातचीत हुई। 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में सेमीफाइनल में ओडिशा का सामना पंजाब से और झारखंड का सामना मध्य प्रदेश से होगा। तमिलनाडु के कोयम्बतूर में क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में पंजाब ने कर्नाटक को 5-2 से, ओडिशा ने हरियाणा को 5-1 से हराया। वहीं झारखंड ने उत्तर प्रदेश को शूटआउट में हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Akhila. The Parliament has passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha returning the legislation to the Lok Sabha after discussion. The Lok Sabha

दोस्तों समय हुआ है 1:10 समय हुआ है 1:11:03। मैं हूं अंजू, एक बार फिर से आपके साथ कार्यक्रम लेकर आई हूं गीत सुहाने। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

अभी तो दिल की बात शुरू भी नहीं हुई है, अभी तो दिल की बात शुरू भी नहीं हुई है। रात रात को यहीं रोक लो, क्योंकि अभी तो मुलाकात शुरू भी नहीं हुई है।

बिना कुछ कहे ही जो सब कुछ बयां कर देती है, बिना कुछ कहे ही जो सब कुछ बयां कर देती है, तेरी इन कातिल निगाहों को मेरा 100 बार सलाम है।

वैसे तो लाख चेहरे हैं इस दुनिया की भीड़ में मगर, वैसे तो लाख चेहरे हैं इस दुनिया की भीड़ में मगर।

0: दुनिया ढूंढती है खुदा को पत्थर की मूरत में, दुनिया ढूंढती है खुदा को पत्थर की मूरत में, मैंने तो अपने दिल के मंदिर में सिर्फ और सिर्फ तेरी तस्वीर को ही बसाया है।
1: तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से

तेरी बाहों के घेरे में आकर दुनिया भूल ही जाते हैं हम। तेरी बाहों के घेरे में आकर बस ये दुनिया भूल ही जाते हैं हम। यही तमन्ना है ये वक्त यहीं रुक जाए।

एक महफिल सी सज गई है अब मेरी वीरान दिल में, एक महफिल सी सज गई है अब मेरी वीरान से दिल में, जब से आपने मोहब्बत की रोशनी को बिखेरा है आपने।

लाख संभल कर चलते हैं लोग इस जमाने में मगर लाख संभल कर चलते हैं लोग इस जमाने में मगर जिसने भी तुझको देखा एक बार वो अपने सुध-बुध खो बैठा।

दोस्तों कार्यक्रम का आखिरी गीत है, अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 2:10 पर रात सर में लेकर एक बार फिर से रहेंगे आपके साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। विधेयक में संशोधन के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार

0: बाधित होने के बाद कल दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
1: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो। कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
0: सरकार ने बताया है कि वर्ष 2024-25 में किए गए सर्वेक्षण में देश के किसी भी जिले में हाथ से मैला ढोने वाला कर्मी नहीं पाया गया। राज्यसभा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने बताया कि वर्ष 2013 और 2018 के सर्वेक्षण में 58,098 हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों की पहचान की गई थी। उन्होंने कहा कि सभी चिन्हित लोगों को 40,000 रुपए की एक मुश्त सहायता राशि दी गई है। मंत्री ने बताया कि नमस्ते योजना के अंतर्गत सफाई कर्मियों को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार सफाई कर्मियों की सुरक्षा और सम्मान के लिए मशीनीकृत सफाई को बढ़ावा दे रही है। मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए भारत सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन पवन हंस लिमिटेड ने नई दिल्ली में नॉर्वे की कंपनी नोएमी एरोस्पेस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि यह सहयोग देश में स्वदेशी क्षमता को मजबूत करने और नागरिक उड्डयन क्षेत्र में नई तकनीकों को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम है। भारतीय रेल ने कंटेनर ट्रेन चलाने वाले ऑपरेटरों के लिए नियमों में बदलाव को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि अब कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर एक ही अखिल भारतीय लाइसेंस के अंतर्गत भारतीय रेल के सभी मार्गों पर कंटेनर ट्रेन चला सकेंगे। अलग अलग मार्गों के लिए अलग अनुमति और शुल्क की व्यवस्था भी समाप्त कर दी गई है। मंत्रालय का कहना है कि नए नियमों से प्रक्रिया आसान होगी, निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा और रेल के जरिए माल ढुलाई बढ़ेगी। इससे सड़कों पर यातायात का दबाव कम होगा, ईंधन की बचत होगी और कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में कहानी कहने की समृद्ध परंपरा और रचनात्मक प्रतिभाओं की बहुत क्षमता मौजूद है। इसका उपयोग भारत को वैश्विक स्तर पर कंटेंट निर्माण का केंद्र बनाने में किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने नई दिल्ली में नेटफ्लिक्स के सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सारंडो से मुलाकात की। 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में आज सेमीफाइनल में ओडिशा का सामना पंजाब से और झारखंड का सामना मध्य प्रदेश से होगा। तमिलनाडु के कोयंबटूर में क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में पंजाब ने कर्नाटक को 5-2 से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। The Parliament has passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha returning the legislation to the Lok Sabha after discussion. The Lok Sabha had passed the bill on Monday. The legislation amends the Supreme Court Number of Judges Act 1956 for increasing the number of judges of the Apex Court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. Union Law and Justice Minister Arjun Ram Meghwal moved the bill in Rajya Sabha. Replying to the debate in the House, Mr. Meghwal said, in view of the increasing workload of the judiciary, the evolving nature of judicial matters, and the emerging constitutional and legal interpretation issues, increasing the number of judges in the Supreme Court is the need of the hour and timely reform. After completing the business, the Deputy Chairman adjourned the Upper House for the day. The Lok Sabha has passed the Bankers' Books Evidence Bill 2026. The bill seeks to provide a law relating to evidence with respect to bankers' books.

और 12 सेकंड। कार्यक्रम लेकर आई हूँ रात सुहानी, मैं हूँ एक बार फिर से आपके साथ अंजू। रहेगा ये सफर बहुत ही खूबसूरत, तो क्यों ना शुरुआत कुछ अल्फाज के साथ की जाए। चाहकर भी हम खुद को संभाल नहीं पाते हैं, चाहकर भी हम खुद को संभाल नहीं पाते हैं, क्योंकि जब भी तुम पास आते हो हम और मदहोश हो जाते हैं।

जो कभी मिट ना सके वो हसीन सा एहसास हो तुम, जो कभी मिट ना सके वो हसीन सा एहसास हो तुम, तुम्ही के पता कि मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत का खूबसूरत आगाज हो तुम।

ना कोई ख्वाहिश ना कोई तमन्ना, ना कोई ख्वाहिश ना कोई तमन्ना है अब इस दिल को, मेरी इबादत मेरी चाहत मेरी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ तुम हो।

जमाने भर को पसंद होंगी सावन की ये पहली बारिश, जमाने भर को पसंद होगी ये सावन की ये पहली बारिश, पर तेरे बिना इस दिल के लिए सिर्फ ये एक आजमाइश है।

अजनबी थे वो, मगर पहली नजर में कुछ ऐसा कमाल हुआ। अजनबी थे वो, मगर पहली नजर में कुछ ऐसा कमाल हुआ कि निगाहें क्या मिली उनसे, दिल का संभलना ही मुश्किल हो गया।

लाख पहरे लगा ले ये जमाना हमारे जज्बातों पर मगर, लाख पहरे लगा ले ये जमाना हमारे जज्बातों पर मगर, दुनिया से बचकर तेरी निगाहें, दुनिया से बचकर तेरी निगाहों का मेरी निगाहों से मिलना लाजवाब होता है।

आईना भी देखता है जब तुम्हें तो खुद पर गुमान करता है। आईना भी देखता है जब तुम्हें तो खुद पर गुमान करता है। तेरी मासूमियत के आगे तो चांद भी झुककर तुझे सलाम करता है।

दोस्तों, ये कार्यक्रम का आखिरी गीत है। भारतीय स्टूडियो में आ चुकी है। अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार 3:10 पर। भारती रहेंगे आपके साथ कार्यक्रम हमराही लेकर। मुझे अनुमति दीजिए, जल्द मिलूंगी। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। विधेयक में संशोधन के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित होने के बाद कल दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
1: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो। कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को कटाना चाहते हैं।
0: सरकार ने बताया है कि वर्ष 2024-25 में किए गए सर्वेक्षण में देश के किसी भी जिले में हाथ से मैला ढोने वाले कर्मी को नहीं पाया गया है। राज्यसभा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने बताया कि वर्ष 2013 और 2018 के सर्वेक्षण में 58,000 से अधिक

0: ऐसे कर्मियों की पहचान की गई थी। मंत्री ने बताया कि नमस्ते योजना के अंतर्गत सफाई कर्मियों को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार सफाई कर्मियों की सुरक्षा और सम्मान के लिए मशीनीकृत सफाई को बढ़ावा दे रही है। मीटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए भारत सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मीटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में कहानी कहने की समृद्ध परंपरा और रचनात्मक प्रतिभाओं की बहुत क्षमता मौजूद है। इसका उपयोग भारत को वैश्विक स्तर पर कंटेंट निर्माण का केंद्र बनाने में किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने नई दिल्ली में नेटफ्लिक्स के सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सारंडोस से मुलाकात की। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों और उनकी नौकाओं की जल्द रिहाई में सहयोग करने का आग्रह किया है। विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कोलंबो दौरे के दौरान श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत में ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चले आ रहे इस मामले को मानवीय दृष्टिकोण से सुलझाया जाना चाहिए। विक्रम मिसरी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके, प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या, विदेश मंत्री विजिता हेरात और विदेश सचिव अरुणी रणराजा से मुलाकात की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत अफ्रीका के विकास के लिए उसकी जरूरतों और प्राथमिकताओं के अनुसार सहयोग कर रहा है। नई दिल्ली में अफ्रीका दिवस के अवसर पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत को गर्व है कि वो अफ्रीका के सबसे बड़े व्यापार और निवेश भागीदारों में से एक है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष भारत और अफ्रीका के बीच व्यापार 93 अरब डॉलर रहा। डॉ जयशंकर ने कहा कि अफ्रीका के प्रति भारत की नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2018 में युगांडा की संसद में बताए गए 10 सिद्धांतों से प्रेरित है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन पवन हंस लिमिटेड ने नई दिल्ली में नॉर्वे की कंपनी नोएमी एरोस्पेस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस अवसर पर नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि यह सहयोग देश में स्वदेशी क्षमता को मजबूत करने और नागरिक उड्डयन क्षेत्रों में नई तकनीकों को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम है। 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में आज सेमीफाइनल में ओडिशा का सामना पंजाब से और झारखंड का सामना मध्य प्रदेश से होगा। तमिलनाडु के कोयंबटूर में क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में पंजाब ने कर्नाटक को 5-2 से, ओडिशा ने हरियाणा को 5-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. The Parliament has passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha returning the legislation to the Lok Sabha after discussion. The Lok Sabha had passed the bill on Monday. The legislation amends the Supreme Court Number of Judges Act 1956 for increasing the number of judges of the Apex Court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. Union Law and Justice Minister Arjun Ram Meghwal moved the bill in Rajya Sabha. Replying to the debate in the House, Mr. Meghwal said, in view of the increasing workload of the judiciary, the evolving nature of judicial matters, and the emerging constitutional and legal interpretation issues, increasing the number of judges in the Supreme Court is the need of the hour and a timely reform. After completing the business, the Deputy Chairman adjourned the Upper House for the day. The Lok Sabha has passed the Bankers' Books Evidence Bill 2026. The bill seeks to provide a law relating to evidence with respect to bankers' books and to align it with contemporary digital banking practices. It aims to modernize the legal framework to meet the requirements of the present banking system. The bill also has a provision that an electronic or digital record of a banker's book will be admissible, valid and legally enforceable as evidence. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman moved the bill when the House reassembled after the first adjournment at 2 p.m. August 5, 2026 marked 7 years since the historic abrogation of Articles 370 and 35A. On this day in 2019, a landmark decision marked the beginning of a new chapter in the journey of Jammu and Kashmir and Ladakh.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और समय हो गया है प्रोग्राम हमराही का। मैं हूं आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती और शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की, लेकिन आपका स्वागत करती हूं मैं कार्यक्रम हमराही में। जी हां, और एक प्यारे से गीत के साथ शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की, और गीत को अपनी आवाज़ से सजाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने।

कुछ रिश्ते वक्त की किताब में नहीं, दिल की धड़कनों में लिखे जाते हैं। सच्ची मोहब्बत वही है जो दूरियों में भी अपनेपन की खुशबू बिखेरती है।

कभी कभी एक नजर ही पूरी कहानी कह जाती है। जब आंखों में प्यार उतर आए तो शब्द भी मुस्कुराने लगते हैं।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

सुंदरपन भी एक खूबसूरत एहसास होता है जो दिल को बेवजह मुस्कुराने पर मजबूर कर दे। वही तो प्यार की सबसे प्यारी अदा है।

जब किसी की खुशी अपनी खुशी बन जाए और उसकी मुस्कान में अपनी दुनिया नजर आए, तब समझिए कि प्यार अपनी सबसे खूबसूरत मंजिल पर पहुंच चुका है।

प्यार कोई जीत हार का खेल नहीं, ये तो दिलों का खूबसूरत सफर है, जहां अहंकार नहीं सिर्फ अपनापन और विश्वास ही सबसे बड़ी जीत बन जाता है।

और समय कह रहा है कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए। जल्द मुलाकात होगी 4:10 पर। जी हाँ, प्रोग्राम अरुणिमा में। तब तक के लिए मैं आपसे ले रही हूँ अनुमति। आप कहीं मत जाइए, आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। और कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। तब तक के लिए मैं आपसे ले रही हूँ विदा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। विधेयक में संशोधन के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित होने के बाद कल दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
1: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो। कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
0: सरकार ने बताया है कि वर्ष 2024-25 में किए गए सर्वेक्षण में देश के किसी भी जिले में हाथ से मैला ढोने वाला कर्मी नहीं पाया गया। राज्यसभा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने बताया कि वर्ष 2013 और 2018 के सर्वेक्षण में 58,000 से अधिक ऐसे कर्मियों की पहचान की गई थी। मंत्री ने बताया कि नमस्ते योजना के अंतर्गत सफाई कर्मियों को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार सफाई कर्मियों की सुरक्षा और सम्मान के लिए मशीनीकृत सफाई को बढ़ावा दे रही है। मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए भारत सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में कहानी

0: कहने की समृद्ध परंपरा और रचनात्मक प्रतिभाओं की बहुत क्षमता मौजूद है। इसका उपयोग भारत को वैश्विक स्तर पर कंटेंट निर्माण का केंद्र बनाने में किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने नई दिल्ली में नेटफ्लिक्स के सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सारंडोस से मुलाकात की। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों और उनकी नौकाओं की जल्द रिहाई में सहयोग करने का आग्रह किया है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कोलंबो दौरे के दौरान श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत में ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चले आ रहे इस मामले को मानवीय दृष्टिकोण से सुलझाया जाना चाहिए। विक्रम मिश्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके, प्रधानमंत्री हरनी अमरसूर्या, विदेश मंत्री विजिदा हिरात और विदेश सचिव अरुण रणराजा से मुलाकात की। नीति आयोग ने कल री इमेजिनिंग केयर स्ट्रेटजीज फॉर एम्पावरिंग केयर गिवर्स इन विकसित भारत एट 2047 नामक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में देखभाल करने वाले कर्मियों को सशक्त बनाने और देश में एक बेहतर देखभाल व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया गया है। इसका उद्देश्य भारत को कुशल देखभाल कर्मियों के क्षेत्र में एक वैश्विक केंद्र बनाने में मदद करना है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि देखभाल केवल इलाज तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उससे कहीं व्यापक है। 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में आज सेमीफाइनल में ओडिशा का सामना पंजाब से और झारखंड का सामना मध्य प्रदेश से होगा। तमिलनाडु के कोयंबटूर में क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में पंजाब ने कर्नाटक को 5-2 से, ओडिशा ने हरियाणा को 5-1 से हराया। वहीं झारखंड ने उत्तर प्रदेश को शूटआउट में हराया। एक अन्य मैच में मध्य प्रदेश ने दादरा और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप को 7-3 से मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अखिला। The Parliament has passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha returning the legislation to the Lok Sabha after discussion. The Lok Sabha had passed the bill on Monday. The legislation amends the Supreme Court Number of Judges Act 1956 for increasing the number of judges of the Apex Court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. Union Law and Justice Minister Arjun Ram Meghwal moved the bill in Rajya Sabha. Replying to the debate in the House, Mr. Meghwal said, in view of the increasing workload of the judiciary, the evolving nature of judicial matters, and the emerging constitutional and legal interpretation issues, increasing the number of judges in the Supreme Court is a need of the hour and a timely reform. After completing the business, the Deputy Chairman adjourned the Upper House for the day. The Lok Sabha has passed the Bankers' Books Evidence Bill 2026. The bill seeks to provide a law relating to evidence with respect to bankers' books and to align it with contemporary digital banking practices. It aims to modernize the legal framework to meet the requirements of the present banking system. The bill also has a provision that an electronic or digital record of a banker's book will be admissible, valid and legally enforceable as evidence. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman moved the bill when the House reassembled after the first adjournment at 2 p.m. August 5, 2026 marked 7 years since the historic abrogation of Articles 370 and 35A. On this day in 2019, a landmark decision marked the beginning of a new chapter in the journey of Jammu and Kashmir and Ladakh. Prime Minister Narendra Modi, in his message on the occasion, said constitutional changes made in 2019 ushered in development and empowerment in the two union territories. In a social media post, Mr. Modi highlighted that infrastructure has expanded opportunities in areas such as education, healthcare, entrepreneurship and sports have grown in both Jammu and Kashmir and Ladakh. On the 7th anniversary of the abrogation of Article 370, Union Law and Justice Minister Arjun Ram Meghwal, while talking to media, said the historic step accelerated development in Jammu and Kashmir.
2: Article 370 and Article 35A were discriminatory and unjust provisions which were abolished by Prime Minister Narendra Modi in 2019. Since then, the pace of development in Jammu and Kashmir

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और समय हो गया है प्रोग्राम अरुणिमा का. एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करती हूं और समय हो गया है 4:11 और 14 सेकंड. शुरुआत करते हैं कार्यक्रम अरुणिमा की अभिमान फिल्म के गीत के साथ. लता मंगेशकर ने गीत को अपनी आवाज़ दी है और संगीतकार एस जी बर्मन, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी.

कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म जुर्म से कुमार सानू और साधना सरकम की आवाज में। संगीतकार राजेश रोशन, गीतकार इंदिवर।

अभी आपने गीत सुना फिल्म कस्मे वादे से किशोर कुमार मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में संगीतकार आरटी बर्मन आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और कार्यक्रम है अरुणिमा आगे बढ़ाते हैं इस कार्यक्रम को और सुनते हैं अगला गीत फिल्म आया सावन झूम के से मोहम्मद रफी की आवाज़ में संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल गीतकार आनंद बख्शी

आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत। फिल्म धरती से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में, संगीतकार शंकर जयकिशन, गीतकार राजेंद्र कृष्णन।

अभी आपने गीत सुना फिल्म क्रांति से लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज में। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गीतकार संतोष आनंद।

कार्यक्रम कागला गीत सुनते हैं फिल्म साजन का घर से साधना सरगम और कुमार सानू की आवाज में, संगीतकार नतीम श्रवण, गीतकार समीर।

और अब जो गीत है वो है कार्यक्रम का आखिरी गीत। गीत है फिल्म सत्य पे सत्ता से किशोर कुमार, भूपेंद्र, सपन चक्रवर्ती और आरटी बर्मन की आवाज में। तो चलिए सुनते हैं ये गीत और उसके बाद वैसे तो समय कह ही रहा है कि आपसे अनुमति ले ली जाए, लेकिन छोड़ के जा रहे हैं इस प्यारे से गीत के साथ। गीत के बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। जल्द मुलाकात होगी 5:10 पर कार्यक्रम भोर सुहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। विधेयक में संशोधन के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित होने के बाद कल दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया। सरकार ने बताया है कि वर्ष 2024-25 में किए गए सर्वेक्षण में देश के किसी भी जिले में हाथ से मैला ढोने वाला कर्मी नहीं पाया गया। राज्यसभा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने बताया कि वर्ष 2013 और 2018 के सर्वेक्षण में 58,000 से अधिक ऐसे कर्मियों की पहचान की गई थी। उन्होंने बताया कि नमस्ते योजना के अंतर्गत सफाई कर्मियों का कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। नीति आयोग ने कल रीमैनेजिंग केयर स्ट्रेटजीज फॉर एम्पावरिंग केयर गिवर्स इन विकसित भारत 2047 नामक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में देखभाल करने वाले कर्मियों को सशक्त बनाने और देश में एक बेहतर देखभाल व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया गया। इसका उद्देश्य भारत को कुशल देखभाल कर्मियों के क्षेत्र में एक वैश्विक केंद्र बनाने में मदद करना है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. अशोक कुमार लाहिड़ी ने कहा कि देखभाल केवल इलाज तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उससे कहीं व्यापक है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन पवन हंस लिमिटेड PHL ने नई दिल्ली में नॉर्वे स्थित नोएमी एयरोस्पेस के साथ एक गैर बाध्यकारी समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन की अध्यक्षता नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने की। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि यह सहयोग नागरिक उड्डयन क्षेत्र में स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और उभरती प्रौद्योगिकियों का पता लगाने के लिए भारत की व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में कहानी कहने की समृद्ध परंपरा और रचनात्मक प्रतिभाओं की काफी क्षमता मौजूद है। इसका उपयोग भारत को वैश्विक स्तर पर कंटेंट निर्माण का केंद्र बनने में किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने नई दिल्ली में नेटफ्लिक्स के सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी

एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और समय हो गया है प्रोग्राम भोर सुहानी का। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की इस भजन के साथ।

सुख में साथ देने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन सच्ची पहचान वही है जो कठिन समय में भी आपका हाथ थामे रहे। आइए आज ऐसे इंसान बने जो हर परिस्थिति में अपनेपन का साथ निभाए।

कोयल गाती है क्योंकि उसकी वाणी में मधुरता है. उसी तरह हमारी वाणी में भी प्रेम, सम्मान और सद्भाव से भरी हो, ताकि जहां भी जाएं खुशियों की गूंज छोड़ जाएं.